ए आकाशवाणी है FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा। आज दिन सनिचरवार शक संवत 1948 दे हाड़ महीने दी 19 तारीख अते ईसवी सन 2026 दे जुलाई महीने दी 11 तारीख है। स्टूडियो की घड़ी ते समा हो रहा ठीक 5:58 अते हुण साडी अज दी प्रसारण सभा शुरू हुंदी है। इस सभा च असी सारे ही स्रोतियां दा स्वागत करदे हां।

0: FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 5:59 ਅਤੇ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਠੀਕ 5:05 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਕੁਛ ਪਲ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग

0: तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. Both leaders will be reviewing the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade

0: and commerce and defence. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation. Highlighting the shared democratic values and maritime ties between the two nations, Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
1: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना इतने कम शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को आपकी सरकार को आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं
0: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Prime Minister Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Later in the day, Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its sixth Project 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 into its eastern fleet at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by the Defence Minister Rajnath Singh. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, BOPS, along with the Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat yesterday and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime technology, defence and cyber AI domains. Indian Railways has approved 206 crore rupees of coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-finals at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States, last night. In Wimbledon tennis, Czech Chias Karolina Muchova will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. And that is the end of this news bulletin.
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਟਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ 6:10:25 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 6:15 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 7 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋ

जी हाँ सुतियो, रिश्तियां दी गल करिए ते रिश्ते एहसास ते इकरार ते खून दे ते फिर दोस्ताना रिश्ते। इन्हां रिश्तियां दे विच ही साडी जिंदगी है इह खुशियां दे नाल भरदी है ते इन्हां रिश्तियां दे विच इक रिश्ता हुंदा जी एहसास दा रिश्ता। सो एहसास दे इस रिश्ते दे विच साडा ते साडे श्रोतियां दे नाल कुछ खास ही रिश्ता हुंदा ते आवाज़ दी दुनिया दे विच एहसास दा रिश्ता। बिल्कुल जी बिल्कुल, असीं तुहाडे एहसासां दी कदर करदे हां ते एहसासां दी कदर करदे होए असीं तुहाडे नाल हर शनिवार राबता कायम करदे हां प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत हफ्तावारी सिलसिला मॉर्निंग क्विज दे विच। ते मॉर्निंग क्विज दे विच साडे श्रोते स्टूडियो दा नंबर डायल करदे ने 0164-22-43-331 ते असीं उहनां तों पुछदे हां जी सवाल। और प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत विजय लक्ष्मी श्रोतियां दे मुखातिब है। प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते गुड मॉर्निंग दे नाल।

जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैनू इंतजार है मेरे कॉलर दा। स्टूडियो लाइन ओपन हो चुके ने, 0164-22-3131 डायल करो और प्रोग्राम दे विच राबता कायम करो और प्रोग्राम दे विच बनो जी विनर।

0: कार तो काम करो, वादू तनखा बस एक क्लिक पे, वाजी
1: फसी।
2: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो, RBI कहंदा है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण FM बैन 101.1 मेगाहर्ट्ज अते प्रसार भारती दी न्यूज ऑन AIR ऐप ते।
5: जी स्टूडियो दी घड़ी ते समा 7:11 ते 22 सेकेंड हो गए ने, ते एक श्रोता मेरे नाल टेलीफोन लाइन ते है, कर दिया जी असीं उन्हां नाल गल। हैलो
6: हैलो
5: हां जी, सत श्री अकाल।

0: जी जी
1: जी कौन बोल रहे हो?
0: मैं जी गुरजोत सिंह पिंड सीवीएन तो जी बहुत
1: अच्छा गुरजोत जी, की हाल चाल ने तुहाडे?
0: वधिया
1: चलो बहुत अच्छी गल है। ते तुसी कर दे क्यों गुरजोत?
0: जी। 7th क्लास से स्टडी कर दें जी
1: ओहो,
0: अपना।
1: क्या बात है, 7th क्लास दे विच स्टडी करदे हो। ते सब तो पसंदीदा विषय तुहाडा केड़ा है जी?
0: पसंदीदा विषय जी पंजाबी।
1: पंजाबी? पंजाबी दे विच की पढ़दे हो?
0: पंजाबी च जी पंजाबी
1: पंजाबी च? पंजाबी,
0: च कहानी पढ़ते
1: अच्छा
0: हैं जी।
1: कहानी। मैं लगा कि कहोगे पंजाबी दे विच पंजाबी पढ़दा जी। चलो अच्छा, गुरजोत बड़ा प्यारा जिहा नाम है तुहाडा, गुरजोत है ना? ते केड़ी
0: हाँ
1: जगह
0: जी
1: तों तुसी फोन मिलाया राजे?
0: पिंड सीवीएन बठिंडा तो जी।
1: ओके, रेडियो तुसी सुनते हो या तुहाडी फैमिली दे विच कोई होर भी सुनदा ते उन्होंने फोन मिलाउण नूं कहेगा?
0: पापा भी सुनते हैं, मैं तो फोन आप ही मिलाया जी।
1: ओहो, क्या बात है। चलो फिर पूछा सवाल।
0: हाँ जी
1: ठीक है, तुसी मैनूं ये दसना है, जेड़ा साड़ा धरती है, जेड़ी साड़ी अर्थ है, उस दे इनवायरमेंट दे विच, वातावरण दे विच सब तो वध गैस केड़ी पाई जांदी है?
0: नाइट्रोजन
1: ओए होए, क्या बाता ने, क्या बाता ने। गुरजोत तो बहुत इंटेलिजेंट है फिर। बिल्कुल सही है जी तुहाड़ा उत्तर, नाइट्रोजन जेड़ी है वो सब तो।
0: जी।
1: हाँ मैं बोला
0: हाँ जी
1: जी, मैं क्या, बिल्कुल सही है तुहाडा उत्तर, और नाइट्रोजन जेड़ी है सब तो वध पाई जांदी है। पहला तां गुरजोत तुहाडे लई ताड़ियां। गुरजोत तां बई खुश हो गया, ते मैनूं लगदा पिछों गाना भी पुछण लग गया। अपने बापू जी तो पुछ रहे सी केड़ा गाना सुनोगे। हाँ जी
0: हाँ
1: गुरजोत,
0: जी धीरे
1: अच्छा चलो,
0: से पूछ रहे थे जी।
1: अच्छा वीरे तो पुछ रहे सी।
0: हाँ जी
1: चलो एक सवाल दा सही उत्तर दे देता तुसी। बिल्कुल जी बिल्कुल, नाइट्रोजन जेड़ी है वो धरती दे वातावरण दे विच सब तो वध पाई जाण वाली गैस है। एक सवाल दा सही उत्तर होर दे दो, फिर तुसी जेड़ा है जी अपना पसंदीदा गीत मैनूं दसोंगे, मैं फिर वो पसंदीदा गीत तुहाडे लई चलाऊंगी। बड़ा सौखा जा सवाल है, तुसी मैनूं ये दसो, भारत दी सब तो लंबी नदी केड़ी है?
0: पता नहीं जी
1: गैस कर देंदे ना तां भी सही होना सीगा। चलो
0: नहीं।
1: कोई गल नहीं गुरजोत, प्रोग्राम से तुसी फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने दे लिए। सही उत्तर इधर रेडियो तो सुनो जी। सोते हो, इस सवाल दा सही जवाब है जी गंगा। गंगा जेड़ी है वो भारत दी सब तो लंबी नदी है। ते ये जेड़े सवाल सी, दीज टू क्वेश्चंस आर एक्सक्लूसिव फॉर गुरजोत, क्योंकि वो 7th क्लास के स्टूडेंट सी। ते सोते हो तुसी स्टूडियो दा नंबर डायल करना 0164 242 4331, और प्रोग्राम दे विच जुड़ सकदे हो जी दो सवालां दे सही जवाब देने दे लई, ते नाल ही नाल अपना पसंदीदा गीत फिर ताही सुनोगे जी प्रोग्राम दे विच बनोगे विनर।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना, मिति 11 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 10:30 बजे आकाशवाणी FM बठिंडा तो प्रसारित होने वाले अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारिस विच मेहमान होंगे उग्गी कवित्री ते कहानीकार गुरजिंदर कौर हुंदल उर्फ दिलप्रीत गुरी। प्रोग्राम दे मेजबान अते प्रोग्राम इंचार्ज मनदीप रजौरा। सो सुनना ना भूलना, मिति 11 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 10:30 बजे प्रोग्राम सुखन दे वारिस।
1: कोई सिर नावा नहीं सवेरे चंडीगढ़ ते अथने पटियाले, पता नहीं कदों पता नहीं केड़े शहरों उसने सूरज वांग उग पैना है। उसका एहसास चिरागा वांगू बुझे दोस्तां नूं लट लट बलन ला दिंदा है। उसकी दोस्ती च हनेरे नहीं सलामती है दोस्तो। आकाशवाणी दे अदबी सूझवान सत्कारित बुद्धिजीवी स्रोतियो, मिति 12 जुलाई 2026 दिन एतवार शाम 5 बजे बातां पुराने पंजाब दियां दे अंतर्गत तुसी सुनोगे बलजीत शर्मा निर्मित आकाशवाणी FM बठिंडा दी विशेष पेशकश। शेर मोहम्मद खान दा वतनी रोही दा शहरिया केसू, सब दे मना नू मोहन वाला डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह।

0: जी बहुत प्यारा खूबसूरत गीत चल रहा सी, ते उस गीत नु विराम देना भी मजबूरी सी क्योंकि साढ़े श्रोता साढ़े नाल टेलीफोन लाइन ते जुड़े हैं। ते करते हैं जी असीं इन्हां नाल गल। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम
0: सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो
1: जी। रामधारी अमन ने गल कर रहा हूँ, हिसार हरियाणा। तो
0: जी? रामधारी जी, प्रोग्राम थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। हाल चाल ठीक है तुहाडे?
1: जी वधिया है मैम, मैं उम्मीद कर रहा हूँ भी वधिया होंगे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छी हाँ, बहुत वधिया। और सवाल फिर तुहाडे तो पूछ ला।
1: जी जी मैम,
0: तुसी मैनू ये दसना है, वैसे तो बड़ा ही सौखा जा सवाल है, तुसी ऑलवेज ही सही उत्तर दे देने हो।
1: जी
0: भारतीय रेलवे ने केड़े स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली नाल 2006 करोड़ रुपए मंजूर किते ने? ओ प्रणाली, ओ सिस्टम, ओ एक जो रेलवे ने स्वदेशी है बेसिकली, ये एक सिस्टम ऑप्ट कीता है, ओ सिस्टम दा नाम
1: स्वदेशी सिस्टम
0: जिसको हम स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली
1: जो रेलवे को जो भिड़ंत होंगे उन्होंने सुरक्षित रखने
0: बिल्कुल जी
1: वास्ते जो
0: बिल्कुल, रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक जो एक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली को ऑप्ट किया गया बाय द रेलवे, तो उस सुरक्षा प्रणाली का नाम
1: मैम अभी हाल ही था, मैं भूल गया लेकिन मैंने पढ़ा थी,
0: पढ़िया
1: धन्यवाद
0: सीगा।
1: मैम। जी जी जी
0: चलो,
1: जी कवच,
0: उस सुरक्षा प्रणाली का नाम है जी कवच।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम।
0: चलो रामधारी जी, अच्छा लगे थोड़ा गल करके, प्रोग्राम च फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक गीत जरा चल रहा है, रेडियो सुनते ही हो तुसी?
1: जी मैम लगातार सुन रहे थे।
0: सुनते हो? चलो गीत नु एंजॉय करो और नाल नाल सुनो साडा प्रोग्राम मॉर्निंग क्विज।
1: थैंक यू।

0: अपने इमीग्रेशन सेंटर विच दित्तियां जाण वालियां सेवावां जिवें स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, सुपर वीजा, वर्क परमिट ते पीआर संबंधी। जेकर तुसीं इलाके दे लोकां नूं जाणू करवाउणा चाहुंदे हो तां तुसीं आकाशवाणी FM बठिंडा दे कमर्शियल विभाग दीआं सेवावां लै सकदे हो। साडा संपर्क नंबर है 78 379 63 306। ईमेल आईडी है AIRFM.BTI@gmail.com। संपर्क नंबर एक बार फिर नोट कर लो 78 379 63 306।
1: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना। मिति 12 जुलाई, दिन एतवार, सवेरे 7 बजे। प्रोग्राम सचरी सवेर तो नाम तुसी सुनोगे साड़ा हफ्तावारी सिलसिला पैगाम। प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम करन दे लिए नंबर है जी 77 173 73 146। और प्रोग्राम पैगाम सुनते हो तुसी हर एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सचरी सवेर के दौरान। प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा जी। सुनना ना भुलना मिति 12 जुलाई, दिन एतवार, सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सचरी सवेर के तहत साड़ा हफ्तावारी सिलसिला पैगाम।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz से तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सचरी सवेर।
1: लो जी, श्रोता मेरे नाल टेलीफोन लाइन ते जुड़े हुए ने जी, करदे आ असी इहनां नाल गल। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हो जी?
3: मैडम मैं प्रवीण लता सिंगला, परसराम नगर बठिंडा तो जी।
1: जी प्रवीण लता सिंगला जी, प्रोग्राम साडा बहुत बहुत स्वागत है ते तुसी फिर करदे की हो?
3: हां जी मैडम, मैं तुहानू प्लीज एक मिनट मेरी गल सुनो। मेरा स्टूडेंट अज मेरे कोल बैठा है, अगर तुसी ओहदे तो सवाल कोई पुट करो तां ओही। हां जी
1: हाँ जी, हाँ जी प्लीज तुसी अपने स्टूडेंट नाल गल करवाओ।
3: हाँ जी हाँ जी, आज मैं मेरे स्टूडेंट नाल गल करके ही फोन लगाया। मैं क्या भी तेरे तो सवाल पुट करनगे वो।
1: ठीक है जी, तुसी उनां नाल गल करवा दियो।
3: हाँ जी आज प्लीज गल करो।
1: हाँ जी
4: हेलो मैम।
1: हाँ जी सत श्री अकाल।
4: मैम मेरा नाम सुप्रीत सिंह पुन्नी है जी, मैं बठिंडे से है जी।
1: अच्छा सुप्रीत।
4: हाँ जी
1: जी सुखप्रीत जी, प्रोग्राम च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। फिर तुसी स्टूडेंट हो, केड़ी क्लास पढ़ रहे हो?
4: जी मैं बीएससी ऑनर्स कर रही हूं मैथ जी।
1: बीएससी ऑनर्स?
4: हां जी।
1: ते फिर मैम तो पढ़ रहे हो तुसी?
4: हां जी।
1: ओके जी,
4: सर उन्हें बेटे जी। अच्छा, मैम दे ओके उन्हें कोल पढ़ रहे हैं।
1: चलो बहुत अच्छी गल है जी। ते फिर स्टडी थोड़ी अच्छी चल रही है?
4: हां जी हां जी।
1: वैसे मैथ तो ता बड़े लोग ही डरदे है, थानू डर नहीं लगदा? उत्तर देने का मौका दूंगी। ठीक है

0: जी
1: सॉरी मैम,
0: नहीं
1: नहीं
0: पता, चलो
1: मेरी
0: कोई
1: गलती।
0: गल नहीं जी, प्रोग्राम च फोन कीता, बहुत बहुत शुक्रिया जी। श्रुति, इस सवाल का सही जवाब है जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि विशेष तीबर सोर। एक विशेष प्रक्रिया चल रही है जिस दे तहत वोटरां दी सूची नू अपडेट कीता जा रहा है, ते SIR जिस दे तहत मिति 11 अते 12 जुलाई नू एक विशेष कैंप भी लगाए जा रहे ने साडे पंजाब दे विच, हर एक जिले दे विच जिथे तुसी अपनी जाके वोट है जिहड़ी उस नू करैक्ट करवा सकदे हो, वोट नू अपडेट करवा सकदे हो, ताकि वोटर सूची दे विच तुहाडा नाम बनिया रहे। तो स्टूडियो दा नंबर 7:00 समा है, 7:48 ते 7 सेकेंड, और स्टूडियो का नंबर है जी 0164244331, ते डायल करो और प्रोग्राम दे विच करो जी शिरकत।

0: जी, बड़ा प्यारा खूबसूरत जा गीत लता मंगेशकर दी आवाज दे विच, जिंदगी प्यार का गीत है। वाकई जी, जिंदगी प्यार का ही तो गीत है, और इस दे विच प्यार ते मोहब्बत दे लई ही जगह होनी चाहिए है। नफरत, ईर्ष्या, गुस्से, गिले दी इस दे विच कोई स्पेस, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो फिर बिल्कुल जी, बिल्कुल साढ़े दोस्तों के लिए साढ़े इस प्रोग्राम दे विच पूरी स्पेस है जी। एक श्रोता मेरे नाल टेलीफोन लाइन ते जुड़े ने, कर दिया जी गल। हेलो,
1: ਸਤਿ
0: सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो जी?
1: ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਵਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ।
0: जी संदीप जी, प्रोग्राम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे वेले केड़ी जगह तो फोन मिला रहे हो?
1: ਮੈਂ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਜੀ।
0: रजौरी, जिथे तुहाडी पोस्टिंग है ना
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: जी।
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: फिर
1: ਮੈਂ।
0: न्यूज ऑन AIR ऐप ते सुन रहे हो प्रोग्राम साढ़े
1: ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ
0: जी।
1: ਕਰੰਟ
0: और
1: ਅਫੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ
0: केड़ा
1: ਵਧੀਆ
0: केड़ा
1: ਚੱਲ ਰਿਹਾ
0: प्रोग्राम
1: ਜੀ
0: है
1: ਇੱਥੇ।
0: जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, मतलब ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ है कि ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ है?
1: ਇਹ ਮੋਰਨ ਕਵਿਚ ਜੀ, ਇਹ
0: ਮੋਰਨ
1: ਮੈਂ
0: ਕਵਿਚ,
1: ਕਦੇ ਮਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
0: चलो
1: ਜੀ।
0: बहुत
1: ਬਹੁਤ
0: अच्छी गल
1: ਰੇਅਰ
0: है जी।
1: ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ ਕਰਾਂ।
0: जी अच्छा संदीप जी, फिर सवाल तौर ते पूछा
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ।
0: जी। तुसी मैनु दसना है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने हाल ही दे विच चार देशां दा दौरा कीता है, उन्हां चार देशां दे विचों किसे दो देश दे नाम दस दियो, बाकी दो मैं दस दूं।
1: आई थिंक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
0: थिंकिंग गलत हो गई कोई गल नहीं
1: सॉरी
0: जी, ते उत्तर मैं तुहानू दस रही हां। प्रोग्राम च फोन कीता, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी।
1: थैंक यू मैम।
0: जी श्रोतियो, इस सवाल दा सही जवाब है जी कतर, बहरीत, कुवैत अते ओमान। इन्हां चार देशां दा दौरा कीता गया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी वालों। ते समय जी 7:54 0424 244 331 डायल करो स्टूडियो दा नंबर, ते बन जाओ जी प्रोग्राम दे विच जेतू।

0: छवि
1: जी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक हूँ तो थोड़ी देर बाद ठीक 8 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन। 8:15 ते अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन रिले करांगे आकाशवाणी दिल्ली तों। 8:30 बजे खबरां होणगियां पंजाबी दे विच रिले कीतियां जाणगियां आकाशवाणी जलंधर तों।
2: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया।

0: औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU

0: कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा दोवां देशों के संबंधों नूं नवीं ऊंचाइयां ते ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोवां देशों ने रणनीतिक भाईवाली कायम करके एक महत्वपूर्ण कदम चुक्या जो भविष्य के सहयोग नूं नवीं दिशा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा च होई प्रगति की शलाघा करदिआं कहा कि भारत अते न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत खेतर च शांति, स्थिरता अते सुरक्षा नूं मजबूत करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकदे ने।
0: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: इस तो पहला प्रधानमंत्री मोदी का सरकारी भवन विखे रस्मी स्वागत किया गया और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। श्री मोदी आज भारतीय भाईचारे को संबोधन करेंगे और उद्योग ते खेड जगत दी प्रमुख हस्तियां नाल भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जल सेना के स्वदेशी जंगी समुद्री जहाज स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम च पूर्वी जल सेना के बेड़े च शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह की प्रधानगी करेंगे। इस नूं भारत की रक्षा आत्म निर्भरता वाले एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मनिया जा रहा है। समारोह तो पहला जल सेना के जवानों नूं संबोधन करदिआं रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर खेतर च शांति ते स्थिरता बनाई रखना भारत की मुख्य जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि देश के 90% तो वध व्यापार समुद्री मार्गों राही हुंदा है जिस नाल समुद्री सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी भारत दी स्वदेशी रक्षा निर्माण समर्थावां दा प्रतीक है। 75% तो वध स्वदेशी समगरी नाल बनाया गया यह आधुनिक जंगी समुद्री जहाज अत्याधुनिक स्टील्थ टैक्नोलॉजी नाल लैस है ते हर तरह दे समुद्री कारजां नूं सफलतापूर्वक पूरा करन दे वी समर्थ है। उन्होंने जोर दे के कहा कि यह जंगी समुद्री जहाज भारत दे समुद्री हितां दी राखी लई तैयार है। रक्षा मंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि जंग दे ढंग तरीके तेजी नाल बदल रहे ने ते भविख विच टकराव नवे रूप लै सकदा है। उन्होंने हथियारबंद बलों नूं अपने हुनर नूं लगातार अपग्रेड करन, उभर रही टैक्नोलॉजियां विच महारत हासिल करन ते विकसित हो रही सुरक्षा चुनौतियां दा सामना करन लई शरीरिक अते मानसिक तौर ते तैयार रहन दी अपील की थी। उन्होंने भरोसा दिता कि सरकार हथियारबंद बलों नूं सब तों वधिया हथियारां टैक्नोलॉजी ते स्रोतां नाल लैस करना जारी रखेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की साहली सुरक्षा नूं मजबूत करने लई पूरी तरह वचनबद्ध है। गृह मंत्री ने बंदरगाहां जहाजरानी ते जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नाल बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना च हुई प्रगति की समीक्षा दौरान एक गल कही। गृह मंत्री ने कहा कि बंदरगाह सुरक्षा की जिम्मेवारी सिर्फ लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियां नूं सौंपी जानी चाहिए है ते सिर्फ केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल वालों सिखलाई प्राप्त कर्मचारियों ही तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने मौजूदा बुनियादी ढांचे की वरतों करते हुए बंदरगाह सुरक्षा सिखलाई संस्था सिखलाई छेती तो छेती शुरू करने का निर्देश दिता। गृह मंत्री ने अधिकारियों नूं ब्यूरो अधीन तैनात किए जाने वाले सारे सुरक्षा कर्मचारियों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्यूरो के सुरक्षा ढांचे अधीन आने वाली सारिया बंदरगाहों के कंटेनर स्कैनिंग की सहूलत भी होनी चाहिए है। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन अज बिहार के एक दिना दौरे ते गया जाणगे। इस दौरान वह बिहार के लोक प्रशासन ते देहाती विकास संस्थान विखे बिहार विधानसभा के मैंबरां लई सिखलाई प्रोग्राम के उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन करनगे। कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की वरतों भारत के सभ्याचार ते विरासत की संभाल ते समावेशी विकास लई प्रभावशाली ढंग नाल कीती जानी चाहिए है। नवी दिल्ली च एक किताब जारी करने बारे समागम च बोलदिआं उन्होंने कहा कि तकनीकी तरक्की भारत दीआं सभ्याचारक कदरां कीमतां ते कौमी तरजीहां दे मुताबक होनी चाहिए है। महिला अते बाल विकास राज मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि औरतां नूं ना सिर्फ नवीं टैक्नोलॉजियां दी वरतों करनी चाहिए है सगों उन्हां दे विकास च सरगर्म भागीदार भी बनना चाहिए है। पंजाब भर में चल रही विशेष तीबर सोध SIR तहत घर घर जाके गणना फार्म भरन की कार्रवाई प्रगति अधीन है। कार्ज 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया होर सुचारू बनाने सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते आज तो 2 दिन विशेष कैंप लगाया जा रहा है।

वतन की खातिर जो हंसकर कुर्बान हो जाए वो अमर हो गए, इतिहास की पहचान हो गए। प्रोग्राम महक पंजाब दी तहत देशभगती दे गीत सुन रहे तमाम श्रोतिया नूं इस प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अज दे प्रोग्राम दे विच सुनाए जाणगे जी कुछ कु देशभगती दे गीत। सो प्रोग्राम दा आगाज करते हैं मुहम्मद रफी दी आवाज़ दे विच गाए इस गीत जिसनों लिया गया फिल्म जागृति चों।

हसीन चेहरों से ज्यादा हसीन दिल हुआ करते हैं, जो मोहब्बत निभा जाए वही खास हुआ करते हैं। जी हाँ श्रोतियो, हसीन चेहरों के नाल नाल हसीन दिल दी गल होएगी प्रोग्राम पैगाम दे विच मेरे नाल यानी कि विजयलक्ष्मी दे नाल। और प्रोग्राम पैगाम तुसी सुनोगे कल मिति 12 जुलाई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान।

0: सुनना ना भूलना। मिति 12 जुलाई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
0: सरहद पर जो जागते हैं तभी हम चैन से सोते हैं, उन वीर जवानों के आगे हम सिर झुकाकर रोते नहीं, गर्व से नतमस्तक होते हैं। जी हाँ, सोते प्रोग्राम चल रहा है जी, देशभक्ति दे गीत ते स्टूडियो की घड़ी ते समा 8:52 मिनट ते 42 सेकंड।

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना, मिति 11 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 10:30 बजे आकाशवाणी FM बठिंडा तो प्रसारित होने वाले अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारिस विच मेहमान होंगे उग्गी कवित्री ते कहानीकार गुरजिंदर कौर हुंदल उर्फ दिलप्रीत गुरी। प्रोग्राम दे मेजबान अते प्रोग्राम इंचार्ज मनदीप रजौरा। सो सुनना ना भूलना, मिति 11 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 10:30 बजे प्रोग्राम सुखन दे वारिस।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।

भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर।

0: کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا۔
1: دیپ آنند،
2: فوجی بھائیو، اپنے 30 برس کی فوجی زندگی میں میں نے کتنی فلموں میں کام کیا مجھے کچھ یاد نہیں، اس لیے کہ کام میں اتنا مشغول رہتا ہوں کہ پچھلا سارا ٹٹول ٹٹول کا کھوج نکالنے میں وقت جاتا ہے اور کام رک جاتا ہے۔ آگے کی رفتار تیز ہے اور رک کر پیچھے مڑ کر گزرے ہوئے مائل سٹونز کو کیوں گنا جائے۔
1: بیتے قریب 6 دشکوں سے زیادہ وقت سے وویدھ بھارتی پر گونج رہی ہے وشیش جے مالا۔
3: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
6: कहाँ चल दिया बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज के फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुन टुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली।

0: और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छे बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी

0: संगरोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं आया।
1: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का

0: में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: चेक कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सब के दिलों पर राज कर रही हैं।

0: तो आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अदमोल खजाना।
1: आन मिलो, आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा होया है जी 9:59:42। ठीक 10 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी जलंधर दे विशेष प्रसारण। कुछ पल करो इंतजार।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। जनगणना दी महत्ता इस विषय ते पेश कर रहे हैं एक विचार चर्चा। इस विचार चर्चा च भाग लै रहे ने डॉक्टर जसकरण सिंह, डॉक्टर राजन शर्मा ते प्रोफेसर परमिंदर पोगल। इस विचार चर्चा नू आकाशवाणी जलंधर दे नाल नाल आकाशवाणी दे बठिंडा ते आकाशवाणी दे पटियाला केंद्रां तों वी प्रसारित किया जा रहा है।
1: अज दे खास प्रोग्राम जनगणना दी महत्ता विच आप सब दा स्वागत। जिवें कि सानू पता है कि भारत दी 16वीं जनगणना दी शुरुआत इस साल अप्रैल तों हो चुकी है अते इसका अगला चरण अगले साल फरवरी 2027 विच होवेगा। पहले चरण विच घरां दी गिणती होवेगी अते दूजे चरण विच देश विच रहण वाले व्यक्तियां दे ब्यौरियां नूं सूचीबद्ध किया जाएगा। जनगणना एक विशाल योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिस विच एक देश विच रहण वाले व्यक्तियां नाल संबंधित समाजिक, आर्थिक, सभ्याचारक अते भूगोलिक अंकड़ियां नूं एकत्र किया जाता है, संकलन किया जाता है, फिर विश्लेषण किया जाता है। वैसे यह हर 10 साल बाद हुंदी है पर इस बार कोरोना महामारी कारण यह लगभग 15 साल बाद हो रही है। इस जनगणना की महत्ता नूं जन जन तक पहुँचाउण दे संकल्प नाल अज साडे नाल विद्वान सज्जन मौजूद हैं जो इस विषय बारे महारत रखते हैं, जिन्हां विच प्रोफेसर पी एस पोगल, साबका प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पोलीटिकल साइंस आरिया कॉलेज लुधियाना, डॉक्टर राजन शर्मा एजुकेशन डिपार्टमेंट डी ए वी यूनिवर्सिटी जलंधर, मैं डॉक्टर जसकरण सिंह रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा तो इस डिस्कशन नूं संचालन करांगा। डॉक्टर राजन शर्मा जी, मैं थोड़े तो सब तो पहला ये जानना चाहवागा जिहड़ी सेंसस 2027 है ये पुरानियां जिन्नियां भी जनगणनावां होईयां उन्हां नालों किवें वक्खरी है?
2: हाँ देखो जी, ये जिहड़ी जनगणना हो रही है ये अपने आप विच विलक्षण है क्योंकि ये पहली बारी भारत विच और इन्ने विशाल पद्धर ते पूरी दुनिया का भी असी लै लीए ये पहली डिजिटल सेंसिस हो रहा है, मतलब लोगों की संख्या का जड़ा है गणना की जा रही है। दूसरी जिहड़ी खासियत ये है कि ये जिहड़ी जनगणना होएगी ये स्वै तौर पर सैल्फ इनमोरेशन कि तुसीं खुद जड़ा है उत्थे मतलब वैबसाइट पर जाके उत्थे ऐप हैगी है एंड्रॉयड विच भी और एप्पल विच भी उत्थे जाके तुसी खुद अपने आप जिहड़े है वो परिवार का जिहड़ा मुखी है रजिस्टर करके अपने परिवार की सारी जानकारी जिहड़ी है वो दे सकता है, जिहड़ी बाद विच जिहड़े ऑफिसर है वो आके उन्हू चेक करनगे, उन्हू वेरीफाई करनगे। तीजी गल जिहड़ी उहदे नाल इंपोर्टेंट है कि इस वारी जिहड़ियां बिल्डिंग्स है घर जिहड़े है उन्हों का भी गणना होएगी और उन्होंने जियो टैगिंग की जाएगी और

0: सो उन्हां दी अप्रोच जो भी होवे डाटा बेस है। सो इस करके इस एक्सरसाइज का जिहड़ा महत्व है वो बहुत अपने आप दे विच जबरदस्त है कि जे ये डाटा नहीं होएगा या इहदे चों कोई डाटा सही नहीं जाएगा तां जिहड़ियां नीतियां बन गईयां जिहड़ी अगे प्रोग्राम बन गए तुहाडे बेनीफिट्स वास्ते लोकां दे बेनीफिट वास्ते उहदे विच कोई ना कोई जिहड़ी है गड़बड़ होण दी संभावना रहेगी। इस करके जिस तरह डॉक्टर शर्मा ने कहा मैं भी इस नूं रीएम्फेसाइज करूंगा कि जदों इनुमरेटर्स या जिहड़े जनगणना वाले जिहड़े लोग ने वो करो करी जाण तां उहनां नूं बेखौफ हो के जिहड़ी है अपनी इनफॉर्मेशन जिहड़ी दित्ती जावे क्योंकि वो इनफॉर्मेशन जिहड़ी है बेसिक इनफॉर्मेशन है जिहदी बहुत जबरदस्त जरूरत हुंदी है फॉर पॉलिसी प्लानिंग ना सिर्फ देश दे लैवल ते स्टेट लैवल ते ईवन थोड़े डिस्ट्रिक्ट लैवल पे जिहड़ियां पॉलिसीज बनियां उस डिस्ट्रिक्ट का डाटा जिहड़ा है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ नूं जिहड़ा है उहदे नाल स्टैटिस्टिकल डाटा जिहड़ा है शेयर किया जाता है ताकि उन्हां चीज़ों नूं ध्यान दे विच रखते हुए वो सारा काम किया जाए। ये इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है और सारिया नूं इस दे विच वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जिवें डॉक्टर राजन हुणी दो पहलू छोए सी, एक तां डीलिमिटेशन ते एक जो इसका सेंसस हो रही है नाल दी नाल, जिवें तुसीं डिवेलपमेंट दी गल कीती है, विकास दी गल कीती है, उहदे विच राजनीति आपां मन के चलदे हां कि आधार हुंदी है विकास दे लई, राजनीति
0: बिल्कुल
1: काफी बहुत वड्डा रोल प्ले करदी है।
0: बिल्कुल
1: इह दोवें पहलुआं नूं तुसीं किवें देखदे हो, जो सेंसस दे विच इस बार इह आपां इह सिद्धे जुड़े हुए ने इह दोवें सेंसस दे नाल इस बार दी?
0: नहीं ठीक है। ये जिहड़ा सेंसस का डाटा हैगा वो साडी राजनीति नूं भी प्रभावित करता है। जदों साडे जिहड़े पोलिटिकल लोग ने पोलिटिकल जिहड़ियां पार्टीज ने उहनां नूं किते ना किते पता लगदा है कि किस तरह के लोग कित्थे रह रहे हैं तो वह भी अपनियां जिहड़ियां इलैक्टोरल पॉलिसीज है उहदे मुताबक बणाउंदी है। पहलां आपां देखते हैं कि साडे देश दे विच जिहड़ियां पोलिटिकल पार्टीज आ कास्ट फैक्टर की है रिलीजियस फैक्टर। हालांकि साडा देश सैकुलर है ये नहीं चाहिदा अनफॉर्चुनेट है लेकिन ओवर द ईयर ये चीज़
1: जी
0: हो गई है और ये उस डाटा का जिहड़ा हैगा उहनूं असीं इस्तेमाल कहीए या उहदा दुरुपयोग कहीए वो इन्ना क कर लेंदियां कि अपनी जिहड़ा वोट पॉलिटिक्स वास्ते उहदी जिहड़ी है यूसेज हो जाती है। ये एक हुण यूनिवर्सल फिनोमेना है साडे देश नहीं हुंदा सारी दुनिया च हुंदा। सो जिथे चंगीआं चीज़ां नाल आउंदियां उत्थे इक अद्धी कोई जे इस तरह की भी आ जाए तो कोई एडी गल नहीं है। लोगों को शाई अवे नहीं करना चाहिए उन्हां नूं इस भाग लेना ही चाहिए।
1: डॉक्टर राजन, मैं थोड़े कोलों विकास दे नाल ही संबंधित दो महत्वपूर्ण पहलू, एक सिक्ख्या एक सेहत, इहदा वी इहदे अंकड़े भी साडी इस सेंसस दे विच निकल के सामने आउणगे।
0: जी
1: तुसीं जदों इहनां दोवां नूं देखदे हो, की तुहानूं लगदा है कि जिहड़ी इह जनगणना हैगी है इह मददगार हो सकदी है सिक्ख्या ते सेहत नूं दीआं पॉलिसीज बनाउण दे लई?
0: देखो ये दो चीजें जिहड़ियां ना सिक्ख्या और जिहड़ी सेहत है जे असीं देखिए अपने गुआंढ विच ही देखिए साडे गुआंढ विच जिहड़े साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जिहड़े इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह ये जिहड़े है इन्हां च देखिए भी इन्हां नूं लगभग साडे बराबर ही आजादी मिली सी और उन्हां ने अपनी सिक्ख्या ते हेल्थ ते बहुत ध्यान दिता। एशियन टाइगर कहिंदे इन्हां देशां नूं। छोटे देश ने विकास बड़ा कीता क्योंकि जदों एक बंदा पढ़ लिख गया ते फिर बाकी चीज़ां उन्हें अपने एक पढ़ी लिखी माँ जिहड़ी है उन्हें पता है कि मैं बच्चे नूं जिहड़ा है वो टीके लगाने छोटे पैदा हुए बच्चे नूं और मैं किस तरह घर नूं चलाना है। मतलब जिहड़ी सिक्ख्या है वो तीजा नेत्र है ते उन्हें अपने आप ही अपनी सेहत का ख्याल रख रखना। इस करके ये बुनियादी चीजा है। सरकार ये बल बहुत सीरियस है और खास करके अगर मैं थोड़ा दसा कि ये जी एक्सरसाइज हो रही है जिदे करीब 11,718 करोड़ रुपया खर्च होना है और लगभग 30 लाख कर्मचारी अधिकारी जड़े है वो भाग लेंगे सुपरवाइजर भी होंगे
1: जी
0: और 2.4 करोड़ लोग जड़े है उन्होंने अस्थाई तौर पर रुजगार मिलेगा।
1: जी
0: मतलब ये एक बहुत वड्डी मतलब प्रक्रिया है जिदे विच हर बंदे नूं और एक मैं भोगल साहब दे पॉइंट नूं ऐड करना चाहुंदा है कि ये जिहड़ी जानकारी है ये तुसीं ना नहीं कर सकते ते ना ही तुसीं गलत डेटा दे सकदे हो। ये
1: जी
0: पार्लियामेंट दा एक्ट है। इस करके जे आपां कहीए भी आपां कोई साडे न्यूमरेटर आउंदा ते असीं उहनूं एंटरटेन नहीं कर सकते ये तुहानूं फाइन भी हो सकदा और सजा भी हो सकदी है। इस करके ये कोई ऑप्शनल नहीं चीज़ हैगी।
1: जी
0: ये बहुत ही जरूरी है जिदा मैं दस्या है कि ये कोई डरन वाली गल नहीं है। सारी जानकारी दो साड़ी भलाई वास्ते है। ये जानकारी सीक्रेट रखी जाएगी कोई आरटीआई दे तहत भी नहीं है जानकारी ला सकता। सो इस करके ये जिहड़ी तुसी इनकार नहीं कर सकते इनफॉर्मेशन
1: जी
0: और तुहाडा एफर्ट बनता है जाती तौर पर कि तुसी सही तथ्य जिहड़े आ
1: जी
0: अपने बारे छुपाउण वाली कोई गल नहीं है
1: जी
0: ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
1: ਜੀ
0: ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
1: ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ

इस चर्चा च भाग लिया सी डॉक्टर जसकरण सिंह, डॉक्टर राजन शर्मा ते प्रोफेसर परमिंदर भोगल होना ने। पेशकश प्रभजोत कौर। इस प्रोग्राम नू आकाशवाणी जलंधर दे नाल नाल आकाशवाणी दे बठिंडा ते आकाशवाणी दे पटियाला केंद्रां तों वी प्रसारित कीता गया।

चेतर ने बुहा खड़काया, चेतर ने बुहा खड़काया। कलम कुड़ी दे बुल कुमलाए, आज दा गीत इस तरह बनिया जिमें उस दिया अखां दे विच हरफां दे कुछ हंजू आए। कलम कुड़ी दे बुल कुमलाए, दिल दे सारे वरके थुले, दिल दे सारे वरके थुले, आज दा गीत इस तरह बनिया जिमें चुपते जख्मां विचों लफ्जां दे कुछ तोपे खुले, दिल दे सारे वरके थुले। शाहां नाल हिसाब चरोका, कई हादसे तार चुकियां, फिर भी हिंद से वधे जांदे, कौन करेगा लेखा जोखा। शाहां नाल हिसाब चरोका, वहीं लैके चेतर आया, वहीं लैके चेतर आया, सज्जी अख जमीन दी फड़की, मौत दे कोरे कागज उत्ते जिंदगी ने अंगूठा लाया, वहीं लैके चेतर आया, चेतर ने बूहा खड़काया। आज दा गीत इस तरह बनिया जिमें इश्क दे पिंडे उत्ते अखरां दा कुछ मुड़का आया।

चेतर ने पासा मोड़िया, चेतर ने पासा मोड़िया, रंगां दे मेले वास्ते फुल्लां ने रेशम जोड़िया, तू नहीं आया। हुईयां दोपहरां लम्मियां, हुईयां दोपहरां लम्मियां, दाखां नू लाली छू गई, दाती ने कणकां चुम्मियां, तू नहीं आया। बदलां दी दुनिया छा गई, धरती ने बुक्कां जोड़ के अंबर दी रहमत पी ली, तू नहीं आया। रुखां ने जादू कर लिया, रुखां ने जादू कर लिया, जंगल नू छौंदी पौण दे होठां च शहद भर गया। रुखां ने जादू कर लिया, जंगल नू छौंदी पौण दे होठां च शहद भर गया, तू नहीं आया। रुतां ने जादू छोनिया, चन्ना ने पाइया आण के रातां दे मत्थे धोनिया, तू नहीं आया। अज फेर तारे कह गए, अज फेर तारे कह गए, उमरां दे मैली अजे भी हुसनां दे दीवे बल रहे, तू नहीं आया। किरणा दा चुरमट आखदा, रातां दी गूढ़ी नींद चों हाले भी चानण जागदा, तू नहीं आया, तू नहीं आया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 11 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंच गए हैं। ऑकलैंड में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संयुक्त वक्तव्य में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी हित के मुद्दों से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उधर ओमान के मस्कत में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े में 6वें स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल किया। ये पोत 17A परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी आज बिहार में गयाजी के दौरे पर रहेंगे। मुंबई में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से मुंबई पुणे रेल मार्ग पर रेल सेवाएं प्रभावित हैं। इस बीच सेंट्रल रेलवे ने 17 जुलाई तक 22 नियमित और 8 विशेष रेलगाड़ियां रद्द की हैं। खेलों की दुनिया में अगर नजर डालें तो विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

दिल के वीराने में एक सोए हुए शहर को जगाने के लिए तो ये गुड मॉर्निंग हुई है, एक नई सुबह हुई है, नई शुरुआत हुई है, और हमारी हिंदी फिल्मों की दुनिया का ताजा हाल लेकर मैं भी तो आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड ट्रेल्स ये प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम करते हैं ये सारी बातें कि बॉलीवुड के गलियारों में क्या कुछ खास हो रहा है, कौन सी मूवी रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन क्या है, न्यू प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से बॉलीवुड सेलेब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो इन सभी के साथ मैं सोनू भट्ट आ गई हूँ आपके लिए लेकर ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लेटेस्ट खबरों से बना हुआ, भरा हुआ और एक बहुत ही एंटरटेनिंग और मसालेदार प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। और इसमें बने रहिए आप हमारे साथ, सुनते रहिए हमें आप आकाशवाणी रेनबो के जरिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली एनसीआर में, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए हम पहुंच रहे हैं आप तक। मोबाइल एप्लीकेशन का करते हैं अगर आप इस्तेमाल तो न्यूज ऑन AIR है आपके पास, और अगर आप OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के जरिए हम तक पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़िए, जो भी माध्यम रखिए लेकिन दिल से दिल तक जुड़े रहिए, यही हमारा मोटो भी है, यही हमारी टैगलाइन भी है कि हम पहुंचते हैं दिल से दिल तक। बहुत सारी बातें मेरे पास बॉलीवुड से रिलेटेड, बॉलीवुड सरताज के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कमाल का सवाल भी, बने रहिए इसी तरह से एंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो, बॉलीवुड ट्रेल्स चल रहा है।

ब्यूटीफुल ट्रैक। और इसके जस्ट बाद एक बहुत ही कमाल की खबर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि बॉलीवुड से आई है। मोस्ट एंटिसिपेटेड कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो उसमें शुमार धमाल 4, जिसका बहुत ही इंतजार था, सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। कल बीते दिन ये रिलीज हुई है। मल्टी स्टारर ये मूवी है, इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी है और पहले ही दिन इसने बहुत ही अच्छी कमाई करके साबित कर दिया कि दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार तो था ही। इसके जो छोटे छोटे टीजर आ रहे थे उनमें इनके जो पंचेस दिखा रहे थे, जो जोक वाले पंचेस थे, कॉमेडी के पंचेस थे, वो अच्छे से लैंड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर एक उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी एक फिल्म, एक कॉमेडी फिल्म देखने को मिलेगी। और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इसमें, एक से एक बड़े इसमें स्टार शामिल हैं, तो उम्मीद है कि इस फिल्म में की कहानी भी बांधे रखेगी लोगों को। खैर, इट्स टू अर्ली टू जज, एक हफ्ता होने दीजिए, पता चल जाएगा क्या कमियां रही, क्या अच्छा लगा, किन पर काम करने की जरूरत है। अभी तो शुरुआती क्रेज है, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो दर्शक हैं वो पहुंच रहे हैं वहां पर, बड़ी संख्या में वहां तक पहुंच रहे हैं। और बात करें इस कमाई की इसकी, तो अजय देवगन की फिल्म है, अपने आप में बड़ा नाम है। पहले दिन जो घरेलू बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 13.75 करोड़ की ओपनिंग कलेक्शन की है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। और कई फिल्म जो है लगभग छोटी मोटी

जो पिछले दिनों रिलीज हुई 10 फिल्म्स, उनका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है पहले दिन की इस कमाई से। और इंडियन ग्रॉस और ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो इन सब में भी अच्छा काम करते हुए ये पहुंच गई है, लगभग 5 करोड़ का कलेक्शन यहां पर किया है। तो 21.50, इसका यह मतलब है कि 21.50 करोड़ तक ये पहुंच गई है, बिजनेस कर लिया है। और ये देखिए, कल रिलीज हुई फिल्म 10 तारीख को, आज 11 तारीख है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक ही दिन मिला है फिल्म को, लेकिन अच्छा ये कमाई कर लेगी। और मुझे तो लगता है ये अपनी जो कॉस्टिंग है उसको भी निकाल लेगी जल्दी। और वीकेंड है, तो वीकेंड पे तो उम्मीद है कि बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में लोग वहां पर जरूर पहुंचेंगे और अपने अपने पसंदीदा हीरो को देखने के लिए लोग पहुंचते ही हैं। और जहां तक बात करें अजय देवगन की, तो उनका क्रेज है ही, और अरशद भी इसमें नजर आए, और बहुत सारे और भी कलाकार इसमें हैं जो अपने हुनर को दिखाने वाले हैं। तो चलिए, इस फिल्म को अगर मौका मिले और अगर आप पसंद करते हैं इनमें से किसी भी कलाकार को, तो जरूर पहुंचेगा थिएटर में देखने के लिए इस फिल्म को।

ब्यूटीफुल ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं आपको, वो भी है राघव जुयाल से जुड़ी हुई। राघव ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, काफी अच्छी पार्टी भी रही उनकी, और इसी दौरान इस उनके बर्थडे के उपलक्ष्य

में ही द पैराडाइज नाम से राघव जुयाल के, जिसमें अहम भूमिका में निभाने वाले हैं, नजर आने वाले हैं, उसका पोस्टर रिलीज किया फिल्म मेकर्स ने। उनके किरदार का नाम इसमें है विक्रम मलिक, और इस फिल्म में अभिनेता का जो रोल है वो नेगेटिव रोल है। तो विक्रम मलिक की भूमिका में नजर आने वाले हैं, और कल ही ये पोस्टर जो है रिलीज हुआ है। एक तरह से उन्हें बर्थडे गिफ्ट की तरह दिया गया, उस पर विशेष भी लिखी गई उनके बर्थडे की शुभकामनाएं देते हुए इसको रिलीज किया गया। और राघव की अगर बात करें तो इन्होंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था, एक डांसर के रूप में स्टार्ट किया था, और अपना जो स्लो मोशन का डांस है उससे इन्होंने सारे लोगों को बहुत प्रभावित किया। उसके बाद ये एंकरिंग की दुनिया में भी आए, फिर ये ABCD फिल्म से इन्होंने जब डेब्यू किया, जो कि एक बहुत ही डांसिंग थीम पर बनी हुई फिल्म थी और लोगों ने पसंद किया, वहां पे नजर आया इनका एक्टिंग टैलेंट कि ये बहुत अच्छे से एक्टिंग भी कर लेते हैं, अपने किरदार को निभा लेते हैं, उसमें जान फूंक देते हैं। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना। किल और बैट्स ऑफ बॉलीवुड में हम सभी ने राघव जुयाल को बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए देखा है और दर्शकों का दिल जीतते हुए भी देखा है। और वैसे भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट है और देखने में बेहद शानदार दिखते हैं, अपने आप पे निरंतर काम करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे उभर कर आते हैं जब सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं। और अब ये जो फिल्म है ना, ये तेलुगु फिल्म है इनिशियली, तो इसमें ये अपने अभिनय का जलवा दिखाने वाले हैं। हालांकि बाद में इस फिल्म को हिंदी, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम कुल 8 भाषाओं में साथ ही में रिलीज किया जाएगा, और ये अगस्त में रिलीज हो जाएगी। और फिल्म में जो है, आपको बताएं कि जो लीड रोल है वो अभिनेता नानी नजर आएंगे इसमें, जिन्हें नेचुरल स्टार भी कहा जाता है। उनकी तो अपनी ही गजब फैन फॉलोइंग है, तो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होने वाली ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और इसके जो इसका निर्देशन है वो श्रीकांत ओदेला ने किया है, और राघव एक बहुत ही सशक्त भूमिका में नजर आने वाले हैं। नेगेटिव रोल अपने आप में कमाल का होता है, अगर वो बिल्कुल वैसा ही उभर कर आ जाए पर्दे पे जैसा कि वो लिखा गया है, और निभाने वाला उसको बिल्कुल वैसे ही जी जाए, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी राघव के लिए। उनके बर्थडे पर सामने आई है टीजर, और आज ये खबर आपके सामने इस बॉलीवुड रेस के जरिए। हम विश करते हैं इन्हें लक और कि अच्छा काम करें और इसी तरह से एंटरटेन करते रहें इस फिल्मी दुनिया में सभी देखने वाले और सुनने वालों को। सुनते रहिए आप बॉलीवुड रील्स।

0: वाले एक मौका तो इस गाने ने दिया है नाचने का, और दूसरा जो मौका दे रही हूँ मैं सेलिब्रेट करने का, बॉलीवुड सरताज में पार्टिसिपेट करके जीतने का, और फिर उसके सेलिब्रेशन का, यानी कि पूछने जा रही हूँ मैं आपसे बॉलीवुड सरताज वो का सवाल, जो सवाल आप सही जवाब के साथ हमसे जुड़ सकते हैं उस सवाल के सही जवाब के साथ, और एक सेलिब्रेशन का चांस हमें और आपको दोनों को मिलकर मिल सकता है अगर हमारी बात हो जाए तो, है ना? तो आप बॉलीवुड सरताज के इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। सवाल यह है कि आज बर्थडे है कुमार गौरव का। कुमार गौरव बहुत ही शालीन और बहुत ही कहते चॉकलेटी हीरो, अब जो कि रातों रात स्टार बन गए थे अपनी एक फिल्म से जो कि रिलीज हुई थी और बहुत पसंद आई थी युवाओं को, और खास तौर पर जो हमारे बिल्कुल कॉलेज के जो लड़के लड़कियां थे उनको बहुत ये फिल्म पसंद आई थी। एक लखनऊ, ये लखनऊ में जन्मे थे, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जन्मे, और 11 जुलाई को यानी कि आज के दिन ये जन्मे, और बहुत सी फिल्मों में आपने कुमार गौरव को देखा भी होगा, जैसे नाम में, स्टार मूवी में, तेरे कसम में और कांटे जैसी फिल्मों में, और मेरी मोर्स एक लंबी लिस्ट है, फेरिस्ट है, और जुबली स्टार, और हमारे जो लेजेंडरी एक्टर माने जाते थे राजेंद्र कुमार, उनके ये बेटे हैं। अब ये सब तो मैंने बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से वो स्टार बने, रातों रात बने। आपको पता है क्या बताना, आपको बताना है वो फिल्म कौन सी थी, यानी कि उनकी जो पहली फिल्म थी, जो डेब्यू मूवी थी, जिसकी वजह से वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे और सबके जहन में उन्हीं का नाम था, सबकी आंखों में उन्हीं की तस्वीर थी उस समय जिन्होंने उन्हें देखा 1981 में सिल्वर स्क्रीन में। आपको उस फिल्म का नाम बताना है, बताने का तरीका बिल्कुल वही, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, 9868107070 इज द नंबर। सही जवाब सबसे पहले जिन्होंने हम तक पहुंचाया है वो बनेंगे हमारे बॉलीवुड सरताज, और उनसे हम बातचीत का सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप सुनते रहिए इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
6: ठीक है?
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ, जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित

वेल, मैंने ये गाना इसीलिए प्ले किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक मोड़ और आया है सनी देओल की जिंदगी में, जो कि है ओटीटी की तरफ उनको लेकर गया, और उन्होंने ओटीटी पर एंट्री कर ली है 10 जुलाई को बड़े पर्दे के। बहुत ही धमाकेदार ये एक्टर रहे, लेकिन अब ये ओटीटी पर भी अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। फिल्म का नाम है इक्का, ये रिलीज हो चुकी है और ये एक बहुत ही इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें सनी देओल के साथ नजर आएंगे अक्षय खन्ना भी। अक्षय खन्ना आपको पता है ये दोनों कब नजर आए थे, कितने साल पहले, लगभग 30 साल पहले नजर आए थे बॉर्डर फिल्म में, और तब भी कमाल हुई थी वो फिल्म। और इससे भी उम्मीदें की जा रही हैं कि अच्छी बनेगी। और एक कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और हमारी जो हिंदुस्तानी जनता है उसे देखना बहुत पसंद करती है, हमारे दर्शकों को अच्छा लगता है। और इस फिल्म की लंबाई जो है वो है लगभग 2 घंटे 20 मिनट, और अभी तक का इसका जो रिस्पॉन्स है वो यही है कि लोगों को पसंद आ रहा है, और खासतौर पर सनी देओल और अक्षय खन्ना जो एक दूसरे के सामने है, दमदार कलाकार है, दमदार इनकी एक्टिंग है, तो ये उम्मीद और बढ़ाती है फिल्म। अर्जुन मेहरा के किरदार में नजर आ रहे हैं इसमें सनी देओल, और एक बने हैं वकील, और इसी के जरिए सनी देओल का जो ओटीटी का डेब्यू जो है वो हो चुका है। कितनी अच्छी बात है ना, एक्टर्स अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिर्फ एक बड़े पर्दे सिल्वर स्क्रीन तक ही नहीं, लेकिन पहुंच रहे हैं अब उस माध्यम से भी लोगों तक जो कि अब हम लोग ओटीटी तो चलते फिरते कभी भी देख लेते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं समय मिल पाता कि हम पहुंचे थिएटर्स तक, लेकिन ओटीटी के माध्यम से वो और दिल तक पहुंच रहे हैं, लोगों के बिल्कुल हाथ में मोबाइल है, उसके जरिए आप कहीं भी कभी भी जुड़ सकते हैं और इस फिल्म को देख सकते हैं, और उम्मीद है ये फिल्म सभी को पसंद आएगी। इक्का इस फिल्म का नाम है, 10 जुलाई को रिलीज हुई है।

वाली गाना मैंने आप तक पहुंचाया इसलिए क्योंकि ऋतिक से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट छोटी सी मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ कि ऋतिक शायद अब हाँ बोलने वाले हैं डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने इसको अप्रोच किया है डायरेक्टर ने ऋतिक को। बहुत ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं लुका छुपी मिमी और जरा हट के जरा बच के जैसी कामयाब स्मॉल टाउन स्टोरीज को लेकर आए लक्ष्मण विक्की कौशल के साथ बना चुके हैं बड़ा पीरियड ड्रामा छावा, जिसने 800 करोड़ का बिजनेस किया था। और उम्मीद है कि ऋतिक को लेकर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और ऋतिक इसमें हाँ बोल दें तो एक बहुत ही अच्छी जोड़ी कमाल के दो एक्टर दमदार फिल्म के साथ देखने को इसमें मिलेंगे।

0: और इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ही मैं बताने जा रही हूँ आपको बॉलीवुड सरताज का नाम भी। हम कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे संपर्क नहीं बन पाया, फोन पर तो बात नहीं हो पाई कि, लेकिन नाम जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा। अमरदीप कुमार बने हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज बिल्कुल सही जवाब के साथ। और इनके साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंचे हैं जिन्होंने सही जवाब दिए, जैसे अमित कुमार ने पालम से, तनुजा शाह ने महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार मंडल ने सिकटी अररिया बिहार से, अर्चना जुड़ी हमारे साथ मुखर्जी नगर से, सुखलाल बाला जुड़े वेस्ट बंगाल से, विनीत उत्तर प्रदेश बदायूं शहर से हमारे साथ जुड़े हैं, और सही आंसर है लव स्टोरी। यही वो फिल्म थी जिसने कुमार गौरव को रातों रात ओवरनाइट एक सेंसेशन बना दिया था और सबके दिलों पर वो राज करने लगे थे। खासतौर पर जब हम युवाओं की बात करते हैं, यूथ में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। ये फिल्म 1981 में आई थी और इस फिल्म को बनाया था इन्हीं के फादर ने इनको लॉन्च करने के लिए, और इसमें विजेता पंडित नजर आई थी इनके सामने। दोनों की ही डेब्यू फिल्म थी, बहुत ही ब्यूटीफुल इस फिल्म के गाने थे। और अब गाना सुनाने का तो जरूर ये जो मौका है वो मेरे हाथ से जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि समय उतना नहीं इजाजत दे रहा है, लेकिन गानों की जहां तक बात।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 MHz ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 11:59 ਤੇ 32 ਸਕਿੰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ 12:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से

1966 तो चल रही नैक तो दूजी वार ए ग्रेड अतें यूजीसी तो ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा हासिल करन वाली शहर दी एक लौती नामवर संस्था एसएसटी गर्ल्स कॉलेज बठिंडा विच चल रहे कोर्सेज बीए बीकॉम बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल सीएसएम बीसीए बीबीए बीलिब पीजीडीसीए पीजीडी इन योगा पीजीडी इन बैंकिंग अतें इंश्योरेंस पीजीडी इन वेब डिजाइन एमए इंग्लिश हिंदी अतें पंजाबी एमकॉम एमएससी मैथ्स एमएससी आईटी एमबीए एमसीए एमएससी फैशन डिजाइनिंग अति 4 साला बीए बीएड आईटेफ विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला होस्टल कंपटीशन सेल एनईपी अनुसार 3 अति 4 साला यूजी प्रोग्राम्स हर वर्ग ले स्कॉलरशिप स्कीम्स वधेरी जानकारी ले एसएसटी गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171 59121 94175 57848 अति 98720 65150।

0: इस प्रोग्राम दा समा दुबारा नोट करो, बातां पुराने पंजाब दियां, दिन एतवार शाम 5 बजे, मिति नोट करो जी 12 जुलाई 2026।
1: हसीन चेहरों से ज्यादा हसीन दिल हुआ करते हैं, जो मोहब्बत निभा जाए वही खास हुआ करते हैं। जी हाँ श्रोतियो, हसीन चेहरों के नाल नाल हसीन दिल दी गल होएगी प्रोग्राम पैगाम दे विच मेरे नाल यानी कि विजयलक्ष्मी दे नाल, और प्रोग्राम पैगाम तुसी सुनोगे कल मिति 12 जुलाई दिन एतवार सवेरे 7 बजे, प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान।

प्रोग्राम कर परिवार। हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम कर परिवार, सिलसिला सी भैणां दी पसंद। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा, एफ एम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रसारण। साडी स्टूडियो दी घड़ी ते समा 1:09 ते 28 सैकेंड दा हो रहा है। ठीक 1:10 ते रिले करांगे परदेशी खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। खबरां लई कुछ पल करो इंतजार।

0: नमस्कार। ए आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR तहत घर घर जाके गणना करन दी प्रक्रिया निरंतर तेजी नाल चल रही है। 25 जून नूं इस दी शुरुआत ते महज 16 दिनां दे अंदर सूबे च 1 करोड़ तो वध गणना फार्मां नूं सफलता नाल डिजिटाइज कर लिया गया है। सारे घरां विच 99.34% गणना फार्मां दी वंड पहलां ही मुकम्मल कीती जा चुकी है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पंजाब दे मुख चोण अधिकारी CEO श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने दस्सिया कि मुहिम नूं होर हुलारा देण अते जनता दी वध तों वध हिस्सेदारी नूं उत्साहित करन लई अज 11 ते भलके 12 जुलाई नूं पंजाब भर दे सारे वोट केंद्रां ते सवेरे 8 बजे तों दोपहर 3 बजे तक 2 रोजा विशेष कैंप लाए जा रहे ने। इन्हां कैंपां दौरान बाकी रहिंदे गणना फार्म भरे इकट्ठे ते डिजिटाइज कीते जाणगे। वोटर सूचियां दियां खामियां ते फर्क नूं दूर कीता जाएगा ते नागरिकां नूं उन्हां दे वोट ते वेरव्यां नूं अपडेट अते तसदीक करन विच सहायता कीती जाएगी। उन्हां इह वी कहा कि सही वोटर सूचियां तैयार रखण अते लोकतंत्री अमल नूं होर मजबूत करन लई गणना फार्मां नूं एकत्र करना तां उन्हां दा डिजिटाइजेशन करना इक बहुत ही अहम कदम है। मुख चोण अधिकारी ने भी दस्सिया कि वोट केंद्रां दी तर्क संगतता 24 जुलाई 2026 तक मुकम्मल कर ली जाएगी, जिस तों बाद 3 अगस्त 2026 नूं खरड़ा वोटर सूचियां प्रकाशित कीतियां जाणगियां। दावे ते इतराज 3 अगस्त तों 2 सितंबर तक दायर कीते जा सकते ने, जदों की दाव्यां ते इतराजां दा निपटारा 3 अगस्त तों 28 सितंबर दरम्यान कीता जाएगा। CEO ने दस्सिया कि अंतम वोटर सूची 1 अक्तूबर 2026 नूं प्रकाशित कीती जाएगी। श्रीमती अनंदिता मित्रा ने सारे योग नागरिकां नूं अपील कीती कि ओह इन्हां विशेष कैंपां विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण। भारतीय जनता पार्टी भाजपा पंजाब दे इक वफद ने सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगवाई हेठ अज पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया नाल मुलाकात की थी अते अबोर नगर निगम मेयर चोण दौरान बेनेमिया अते सरकारी मशीनरी की दुरवरतों का इल्जाम लाउंदे होए एक मांग पत्र सौंपिया। श्री ढिल्लों के नाल होरना तो इलावा भाजपा के साबका सूबा प्रधान सुनील जाखड़, कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा ते सीनियर आगू मनोरंजन कालिया भी मौजूद सन। मांग पत्र विच पंजाब सरकार अते इसके अधिकारियों की चोण के संचालन विच कथित धक्केशाही ते भाजपा दी चिंतावां दा वेरवा दिता गया है। पार्टी ने राजपाल नूं पारदर्शिता, निरपक्षता, जवाबदेही अते लोकतंत्री नियमां अते कानून दे राज दी सख्ती नाल पालना नूं यकीनी बनाउण लई दखल देण दी अपील कीती है।
1: हमने राज्यपाल को सारी पोजीशन क्लियर कर दी, मेमोरेंडम देकर आए हैं, उसमें बात बता दी कि हमारे 28 जीते हुए मेंबर थे, एक हमारा विधायक था 29 थे, उनके पास 20 थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा जो उनका मेयर डिक्लेयर हो जाए। ऐसे उन्होंने नंगल पे किया, ऐसे उन्होंने राजपुरे में किया, ऐसे उन्होंने पता चला कपूरथले में भी ऐसे किया।
0: इस दौरान अबोहर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ते डिप्टी मेयर ते अहुदियां दीआं चोणां कल शाम नूं मुलतवी कर दित्तियां गईआं सन। पंजाब नूं नशा मुक्त सूबा बनाउण लई चलाई जा रही विशेष मुहिम दौरान वड्डी सफलता हासिल करदिआं अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 मुलजमां नूं 8.378 किलोग्राम हीरोइन ते 2 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार करके सरहद पारों चल रहे नशा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ए जानकारी पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार मुलजम की पछाण अमृतसर के पिंड खासा के रहने वाले एक व्यक्ति वजह हुई है, जबकि दूजा मुलजम एक नाबालिग है। DGP ने दसिया कि मुढली जांच मुताबिक उक्त मुलजम सरहद पार ते तस्कर दे इशारे ते काम कर रहे सन अते वख वख थावां तों हीरोइन दीआं खेपां हासिल करके इन्हां नूं अगे सूबे भर विच सप्लाई करदे सन। DGP ने कहा कि इस मामले विच अगले पिछले संबंधां दा पता लाउण लई बारीकी नाल जांच कीती जा रही है। भारत ते इंग्लैंड दरमियान 5 मैचां दी 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी दा पंजवां ते आखरी मैच अज साउथहैम्पटन दे यूटिलिटा बाउल विखे खेडिया जाएगा। ए मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होना है। इंग्लैंड पहला ही 3-0 दी लीड नाल लड़ी अपने नां कर चुकिया है। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा एक्स हैंडल @AIRRNE जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।

0: इस प्रोग्राम दा समा दोबारा नोट करो, बातां पुराने पंजाब दियां, दिन एतवार शाम 5 बजे, मिति नोट करो जी 12 जुलाई 2026।
1: लो जी 0164-2240-331 नंबर डायल हो चुका है जी। देखते हैं जी अगले कॉलर साढ़े नाल कौन ते कित्थों जुड़े ने। हैलो
2: बेटा जी, प्यार अते सदका।

0: लो जी 0164-2240-331 नंबर डायल हो चुका है। देखते हैं जी अगले कॉलर साढ़े ना कौन ते कितों जुड़े ने। हैलो,
1: हेलो मैडम, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन ते कितों गल करते हो।
1: गुरमेल सिंह सरीवड़ा।
0: हैलो
1: हाँ जी, गुरमेल सिंह सरीवड़ा।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा इस प्रोग्राम दे तहत। ते गीत दस दो जी, अज केड़ा सुनना चाहोगे। फिर
1: गीत पुरानी फिल्म जी, वक्त फिल्म का गीत सुना दो।
0: वक्त फिल्म दा, ठीक है जी, करदे हैं थोड़ी फरमाइश नूं पूरा जी। कॉल करन लई शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया जी, शुक्रिया, धन्यवाद मैडम।

0: का ताज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै तेरा।
1: इस प्रोग्राम नूं तुहाडे तक पहुंचाउण लई तकनीकी सहयोग समूह तकनीकी टीम दा, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा ते इसे गीत दे नाल मैनू करमजीत कौर नूं अज दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश एथे ही समाप्त करन दी दिओ आग्या। धन्नवाद।
2: हैलो फरमाइश।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम हैलो फरमाइश आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्स अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसीं सुन रहे आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रसारण। साडे स्टूडियो दी घड़ी ते समां जी 1:59 ते 23 सैकंड दा हो रहा है। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 2 बजे रिले करांगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली केंद्र तों, ते 2:15 ते रिले करांगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी ते दिल्ली केंद्र तों। खबरां लई कुछ पल करो इंतजार।

0: निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी
1: तब
0: ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
1: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है।
0: जी चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
1: जी

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट दिया रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे।
2: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती सेवा दे प्रसारण। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दे मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक शाम दे 5:22 होए ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम किसान वाणी।

एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे आकाशवाणी FM बठिंडा दी प्रसारण। हुण पेश है जी प्रोग्राम गल्लां चों गल्ल।

0: MCA, MSc Fashion Designing आदि 4 साला BA BEd ITEP विच दाखला शुरू है। आधुनिक सहूलता वाला हॉस्टल, कॉम्पिटिशन सेल, NEP अनुसार 3 अति 4 साला UG प्रोग्राम्स, हर वर्ग ले स्कॉलरशिप स्कीम्स, वधेरी जानकारी ले SST गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171-59121-94175-57848-98720-65।
1: ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री सूखम खुराक सनत अपग्रेडेशन योजना पीएम एफएमई ने देश भर विच 2 लाख तो वध सूखम भोजन प्रोसैसिंग उद्यमां नूं कर्जे मंजूर करन दा मील पत्थर पार कीता। पंजाब च जनतक ट्रांसपोर्ट सिलसिले च अत आधुनिक कैमरिया ते जीपीएस सिस्टम नाल लैस 696 नवीं बसां दा बेड़ा होएगा शामिल। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध एसआईआर तहत वोटरां दी सहूलत लई सारे वोट केंद्रां ते अज ते भलके विशेष कैंप लाए जा रहे ने। पंजाब भाजपा ने सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों दी अगुवाई हेठ पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया नूं अबोर नगर निगम मेयर चोणां दौरान बेनेमिया ते सरकारी मशीनरी दी दुरवरतों दे इल्जाम वाला एक मंग पत्र सौंपिया कि भारत ते इंग्लैंड दरम्यान 5 मैचां दी 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी दा 5वां ते आखिरी मैच अज साउथहैम्पटन विखे खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री सूखम खुराक सनत अपग्रेडेशन योजना पीएमएफएमई ने देश भर विच 2 लाख तो वध सूखम भोजन प्रोसैसिंग उद्यमां नूं कर्जे मंजूर करन दा मील पत्थर पार कर लिया है। इस योजना तहत निवेश 20,300 करोड़ रुपए तो वध हो गया अते रुजगार ते करीब 11 लाख सीधे अते असिधे मौके पैदा किए गए ने। अज नवी दिल्ली विच एक विशेष समागम नूं संबोधन करदिया केंद्रीय खुराक प्रोसैसिंग सनत मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह प्राप्ति ना सिर्फ जशन का कारण है सगों भारत दे फूड प्रोसेसिंग विकास दी यात्रा दे अगले पड़ा लई एक मजबूत नींह भी है। ये प्राप्ति दर्शाउंदी है कि योजना दा दृष्टिकोण देश भर विच ठोस नतीजियां विच बदल रहा है। श्री पासवान ने इस गल ते भी जोर दिता कि औरत उद्यमियां वल्लों करीब 44% लाभपात्रियां दी हिस्सेदारी औरतां दी अगवाई वाले विकास दी सच्ची भावना नूं दर्शाउंदी है जो कि विकसित भारत दा एक मुख थामे। इस मौके ते श्री पासवान ने योजना तहत प्रदान कीती गई बीज पूंजी सहायता दा भी जिक्र कीता। इस राही 4,18,000 तो वध स्वय सहायता समूह मैंबरां दी मदद कीती गई है। पंजाब विच जल्द ही 696 नवीं बसां दा बेड़ा होएगा जो कि अंदरूनी ते बाहरी कैमरिया ते जीपीएस सिस्टम नाल लैस होणगियां ते इन्हां बसां दी राज ट्रांसपोर्ट विभाग वल्लों उन्हां दी निगरानी ते ट्रैकिंग भी होएगी। इस साल अक्तूबर तक राज ट्रांसपोर्ट विच पहली डिलीवरी शामिल कीती जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इस दा खुलासा करदियां पंजाब दे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अशोक लेलैंड कंपनी मुकम्मल बस प्रदान करेगी।
1: देश दे अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे खेतर दे अंदर सब तो वध बसां जे किसे स्टेट कोले ने तां मैं समझदा पंजाब स्टेट आ। अज असीं पंजाब स्टेट दे अंदर 56% दा वाधा करन जा रहे हां। लगभग जिहड़ा नवां टेंडर कीता उहदे विच असीं 696 नवीं बसां खरीद कर रहे हांगे जिहदे विचों लगभग 387 बसां पनबस दे बेड़े च सवार होणगियां, 309 बसां पीआरटीसी कंपनी उहदे विच जाणगी।

0: इस प्रोग्राम दा समा दोबारा नोट करो, बातां पुराने पंजाब दियां, दिन एतवार शाम 5 बजे, मिति नोट करो जी 12 जुलाई 2026।
1: लो जी प्रोग्राम युवानी तहत अगले कॉलर साढ़े ना 0164-22-43-31 नंबर मिला के जुड़ गए ने। हेलो
2: हेलो हेलो।
1: हाँ जी हाँ जी बेटा, नाम दस दो।
2: पवित्र कौर।
1: पवित्र कौर जी, पवित्र कौर कितों बोल रहे ने?
2: बीड बहमन तो।
1: पिंड बीड बहमन, जिला बठिंडा तो। केड़ी क्लास चो?
2: टेंथ जी।
1: टेंथ जो।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम युवाणी दे विच 0164-22-40-331 नंबर डायल करके अगले युवा साथी साडे नाल जुड़ चुके ने। हैलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी बेटा, नाम दस दो।

0: प्यार तेरे दास है। प्लस
1: अच्छा ते बेटा केड़ी क्लास पढ़ रहे हो जा पढ़ चुके हो?
0: टू क्लास कंप्लीट है जी मेरी।
1: प्लस टू तुसी कर ली, मीन इस तोड़ा अप्रैल दे विच एग्जाम कंप्लीट होए, जून च
0: हाँ
1: तोड़ा
0: जी
1: रिजल्ट आ चुक्या, ता हुण अग्गे तुसी प्लानिंग कर रहे होवोगे है ना, दाखला ले लिया ग्रेजुएशन दे विच?
0: हाँ जी सर, ले लिया सी।
1: ले लिया, शाबाश। ते केड़ी स्ट्रीम च दाखला लिया तुसी?
0: मैं फैशन डिजाइनर। थैंक
1: क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जूगी फिर तो, बस
0: यू सर।
1: हमीरगढ़ पिंड वालों दे भी बल्ले बल्ले, ते तेरी भी हमीरगढ़ दी कुड़ी भी है। एक फैशन डिजाइनर हुई सी ऋतु कुमार, सुनया नाम?
0: नहीं सर, पहली बार सुन रही हूँ मैं।
1: चलो कोई गल नहीं, जदों तुसी जाओगे ना पढ़न ओदे विच आऊगा, बहुत वड्डा नाम है ये ऋतु कुमार, एक मतलब कि फीमेल फैशन डिजाइनर सीगे।
0: ठीक है जी।
1: हाँ एक मिस्टर मल्होत्रा ने गए इसनों, बॉलीवुड के जिन्ने वड्डे वड्डे हैगे आगे अपने सेलिब्रिटीज, उन्होंने
0: हाँ
1: वो
0: जी ओके
1: डिजाइन कर देने गे कपड़े।
0: जी।
1: हाँ चलो एनीवे, तुसी साडे नाल राबता कायम किया, ते इन्ने नर्वस जे फील क्यों कर रहे हो?
0: वैसे सर पहली बार कॉल लगी।
1: हाँ देखो ये मंच ताई दा सी युवा साथियों लिए रखे भी, जिन्ना ने कदे कॉल नहीं मिलाई वो साडे नाल जुड़न है ना, अपने दिल दी गल रखन। आकाशवाणी बठिंडा दा ये मंच है, वो वध तो वध साडे नाल राबता कायम करन है ना, ता पहली
0: हाँ
1: बार
0: जी
1: कॉल लगी है, कोई नर्वस होने की लोड़ नहीं होंगी। देखो ये तुहाडा मंच आ, असीं बारी बारी ये गल कह रहे हैं भी ये तुहाडा मंच आ, तुसीं कोई भी गल रखनी है आपां ऑन एयर रख सकदे हाँ, कि इस च कोई
0: थैंक यू
1: दुविधा
0: सर।
1: नहीं। हाँ घबराया ना करो, अगे भी कॉल करते रहा करो, बाकी जेडे साडे चलदे आ ना फन इन प्रोग्राम उन्हां दे विच शामिल भी होया करो।
0: हाँ जी सर जरूर।
1: ठीक है अमनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ठीक है।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: प्रोग्राम सुनने वाले सारे दोस्तों नूं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों आज दे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत तुसी सुनोगे सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो कि आज आधारित है जी सुमन कल्याणपुर ते। इस नूं पेश कर रहे ने सुखजीत कौर। तो प्रोग्राम दे विच हुण सुनांगे जी आपां सब तो पहला इसका पहला भाग, तो 7:30 बजे पंजाबी विच खबरां रिले करांगे, तो 7:40 ते सुनांगे दूसरा भाग, तो सुनांगे जी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने सुखजीत कौर दे नाल।
2: अज दा प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने लैके मैं हाजिर हां सुखजीत, ते मेरे वालों सारे ही स्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार। अज दा ए विशेष प्रोग्राम समर्पित है हिंदी फिल्मी संगीत दी उस महान गायिका नूं जिस दी मिठी सुरीली ते दिल नूं छू जाण वाली आवाज ने लखां स्रोतियां दे दिलां विच सदा लई थां बनाई। अज असीं गल करांगे प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर जी दी।

संगीत दी विधिवत सिख्या उन्होंने पंडित केशव राव भोले उस्ताद अब्दुल रहमान खान ते मास्टर नवरंग वर्गे उच्च कोटी दे गुरुआ तो प्राप्त की। हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत दी मजबूत बुनियाद ने उन्हों दी गायकी नू निखारिया ते हर गीत विच एक वक्री मिठास भर दित्ती।

श्रोतियो सुमन कल्याणपुर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत 1954 विच फिल्म दरवाजा लई गाया। इस गीत दा नाम सी एक दिल दो है तलबगार, जो उन्हां ने तलत महमूद साहिब नाल मिलके गाया। यही उन्हां दी हिंदी फिल्मां दे विच सफल शुरुआत बनी।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे फिल्म ब्रह्मचारी दा एक गीत 1968 दे विच आया ते एक गीत अज भी साडे सारयां दी जुबान ते ओवे ही तरोताजा पिया है। ए सारे गीत अज भी रेडियो टेलीविजन ते संगीत प्रेमियां दियां प्लेलिस्टां विच बड़े चाह नाल सुने जांदे ने।

0: श्रोतियो सुमन कल्याणपुर दी आवाज नू अक्सर बेहद मिठी कोमल ते भावपूर्ण कहा जांदा है। उन्हां दे गीतां विच शास्त्री संगीत दी महक भी महसूस हुंदी है ते फिल्मी संगीत दी रूह भी। सुमन कल्याणपुर दी आवाज गायिका लता मंगेशकर नाल बहुत मिलदी जुलदी सी। उन्हां दे बहुत सारे गीत लता दे अंदाज तों वखरे नहीं हन।
1: इतना है तुमसे प्यार मुझे।

हसीन चेहरों से ज्यादा हसीन दिल हुआ करते हैं, जो मोहब्बत निभा जाए वही खास हुआ करते हैं। जी हाँ श्रोतियो, हसीन चेहरियां दे नाल नाल हसीन दिल दी गल होएगी प्रोग्राम पैगाम दे विच मेरे नाल यानी कि विजय लक्ष्मी दे नाल। और प्रोग्राम पैगाम तुसी सुनोगे कल मिति 12 जुलाई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान।

0: सुनना ना भूलना, मिति 12 जुलाई दिन एतवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान हफ्तावारी सिलसिला पैगाम।
1: प्रोग्राम रंगे गजल दे विच हुण सुनदे आपां अनूप चलोटा नूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने

0: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237142 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

0: नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।

0: 26 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये नशीली हवा।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, गीत रचना गुलजार साहब की और धुन सलील चौधरी की है।
3: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। किसने कहा है? एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्यार का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज के फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: तो चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोल कर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील

0: 1950 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ। मेरा नाम है सलमा और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल की बातें, दिलदार की बातें, उल्फत की बातें और कुछ प्यार भरे चुनिंदा नख्मात की सौगात कार्यक्रम छाया गीत में। जज्बातों में कहीं आग सी लगी हो जैसे, एक नदी झूम के सहरा में बही हो जैसे, कानों में आपने कुछ मेरे कहा लगता है, सीने में झनकार सी उठी हो जैसे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बनकर, हर गली लगता है अब तेरी गली हो जैसे। अपने आगोश में हमको यूं छुपा लीजिए, जिंदगी आपके पैकर में ढली हो जैसे।

ये हवा, रंग, तबस्सुम, ये महकती खुशबू खूब फैले हैं फिजा में। तेरे परचम सारे तेरे दर पे ही रहूं है यही तमन्ना मेरी, बीत जाए तेरी गलियों में ही मौसम सारे। नींद आती नहीं, देखा है जब से तुमको, तेरी आंखों में नजर आते हैं मरहम सारे।

मैं तुम्हारी आंखों से एक बार खुद को देखना चाहती हूं, तुम्हारी पसंद को समझकर खुद को बेहतर और सवारना चाहती हूं। मुझे तुम्हारे दिल में गहरे, बहुत गहरे डूबकर निकलना है और वहां से समेट कर लाई गई मोहब्बत की खुशबू को लेकर बीच आंगन में किसी फूल की तरह खिल उठना है, नए रंग और नई खुशबू के साथ। और मैं जब जब भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे दुनिया दूर तक खूबसूरत दिखाई देती है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। इस बार जब आओ तुम यहाँ उदास सूनी झील में चांद तारों को साथ लेकर, तो मैं भी नजर आऊंगी तुम्हें के चाहत लौट कर आने के वादे पर एतबार करती है। तो जैसे बारिश की बूंदे जमी पर गिर के समा जाती हैं उसमें, वैसे ही समा जाऊंगी मैं भी तुम में।
1: तड़प ये दिन रात की

पर भी लिखा, कुछ लिखा किनारे बैठकर, ख्वाबों में तैरते हुए बहते हुए लिखा, कुछ मझधार में लिखा, कुछ लिखा डूबकर, और लिखा कि प्यार नहीं सिखाता प्यार से इनकार, और सिखाता है प्यार ही डूबना प्यार में। ये प्यार घाटे का वो सौदा है आखिर में, जो फायदे से भर देता है। मुनाफे की किताबों में इसका कोई खाता नहीं, फिर भी ये दीवालिये दिल को मोहब्बत के बेशकीमती खजाने

रहूंगी मैं तुम्हारे साथ जिस तरह जिंदगी के साथ सांसें, जमी के साथ आसमां, नदी समंदर के साथ लहरें पानी, फल फूलों के साथ डाली, चिड़ियों के साथ चंचल चहकार, सूरज के साथ रोशनी, खेत खलियानों के साथ हरियाली, बगिया के साथ माली, राजा के साथ रानी, मोहब्बत के साथ मेल मिलाप के जज्बात, उसी तरह रहूंगी मैं

0: साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

बाकी नजर तो मानते तुम हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर को मानते मेरा फसाना पता या

0: ए जी दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको, हम खो गए जी दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको,
1: किस्मत खुली है, मंजिल मिली है।

0: है कुछ हो गया है हमको।
1: किस्मत खुली है मंजिल मिली है उल्फत के हर कदम को। आया अब जाके जीने का मजा।
0: आया।

0: आज हम न तोड़ेंगे ऐसा नम प्यार की कसम को।
1: हम खो गए, दिल खो गया है, कुछ हो गया है हमको।
0: किस्मत खुली है, मंजिल मिली है, उल्फत के हर कदम को आया।